अस्सलाम वालेकुम सामियों, सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 मई पड़ोस हफ्ता इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर की 3 पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5 भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप नशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसात 3A ईस्ट 4A वेस्ट में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में तरतीब खबरें से सवार प्रोग्राम अनातोली के शाहकार आसमानी कहानियां और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओबर।

सामिन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा दिन कुछ भी ना किया हो लेकिन फिर भी खुद को मुकम्मल तौर पर थका हुआ महसूस किया हो? जिस्म आराम कर रहा होता है मगर जहन के एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, हमारे दौर के सबसे खामोश मगर खतरनाक मसाइल में से एक, जहनी थकन। क्लिनिकल माहिर नफ्सियात और मुसन्निफा राबिया यावूज की TRT न्यूज के साथ गुफ्तगू से मुरतब किए गए इस खसूसी प्रोग्राम में हम जदीद इंसान के जहनी बोझ और हकीकी आराम के माने पर बात करेंगे। तो जहनी थकन क्या है? राबिया यावूज जहनी थकन को यूं बयान करती हैं, दिमाग की तवज्जो, फैसला साजी और मालूमात को प्रोसेस करने वाले निजामों के हद से ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में आर्जी फाल की कमी। तो इसका मतलब क्या है? तवज्जो की कमी, भूलने की आदत और फैसला करने में दुश्वारी, कुछ जाना पहचाना लगा। तो जदीद जहन इतना थका हुआ क्यों है? याहूज के मुताबिक जहनी थकन जदीद जिंदगी की पेचीदगी और मालूमात की ज्यादती का एक फितरी नतीजा है। सोशल मीडिया, ईमेल्स, मुसलसल आने वाले नोटिफिकेशंस, हर वक्त जुड़ा रहना जहन के लिए कोई खाली जगह नहीं छोड़ता। इससे जहन हमेशा चौकस रहता है। सोचें, सुबह आँख खुलते ही आप फोन चेक करते हैं, खबरें, पैगामात, सोशल मीडिया। दिन भर में आप कितने फैसले करते हैं, क्या खाना है, किस ईमेल का पहले जवाब देना है, किस पोस्ट को पसंद करना है या नहीं, सैकड़ों शायद हजारों छोटे फैसले। खामोशी बेचैनी क्यों पैदा करती है? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हम खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, क्यों? राबिया यावूज कहती हैं कि इसकी वजह यह है कि जदीद जहन मुसलसल मुहरिकात का आदि हो चुका है। खामोशी में इंसान खुद को खाली महसूस करता है, यावूज कहती हैं। हालांकि खामोशी अंदरूनी तजदीद की हयातियाती बुनियाद तैयार करती है। जो लोग इस जगह को इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए खामोशी सुकून नहीं बल्कि बेचैनी ला सकती है। यानी दरअसल हम उस चीज से भाग रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या नफ्सियाती तौर पर आराम मुमकिन है? राबिया यावूज का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। नफ्सियाती तौर पर आराम मुमकिन है लेकिन इसके लिए गैर फाल नहीं बल्कि फाल अमल दरकार है। जी हाँ, आराम करना भी कोशिश मांगता है। जहनी आराम सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है जब इंसान शौरी तौर पर मालूमात के बहाव और फैसला साजी के चक्कर से दूर हो। फितरत में वक्त गुजारना, डिजिटल आलात से दूर रहना और महसूस करते हुए जीना, यही जहनी सुकून के बुनियादी अनासिर हैं। क्या छुट्टी काफी है? अच्छा, मैं छुट्टी पर गया हूँ, अब तो मसला नहीं रहा ना? आप सोच सकते हैं बदकिस्मती से बात इतनी आसान नहीं है। या वो